0: फसल। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हजरत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिसा अलैकुम शैउम मिनल कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर, जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो? शेर अरब में। अरब शायरी जो थी उसमें क्या था? अरब शायरी उसमें अल्फाज को बहुत बारीक तरीके से बयान किया गया है। अरबी का एक मशहूर मिसरा है, इन शायरा दीवानुल अरब, इन शायरा दीवानुल अरब, माना क्या है कि शेर अरबों का दीवान है। दीवान का मतलब उनका रिकॉर्ड है, उनकी हिस्ट्री है। अरबी की तस्वीरें आप पिछली कदीम कई सौ साल पुरानी देखें तो उसमें जब अल्फाज की वजाहत होती है तो शेरों पर शेर लिखे होते हैं। तफसीर कुर्तुबी देख लीजिए, तो जो कुर्तुबी की तफसीर है अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो एक वर्ड लाते हैं, वर्ड की एक्सप्लेनेशन शेरों से करते हैं कि फुलां शायर ने इस लफ्ज को यूं इस्तेमाल किया, फुलां ने यूं और यूं, और इसका माना ये बनता है। अब देखिए कि मैं भी जब आपको ये कराती तो शेर तो मैं नहीं लाती इसलिए कि आपने अरबी शायरी पढ़ी नहीं है, लेकिन रूट्स में जाके बात करते हैं कि इस लफ्ज का रूट क्या है। इसीलिए इसका तर्जुमा मैंने ओढ़नी की थी। ओढ़नी, ओढ़नी का मतलब क्या होता है? ऊपर ओढ़ने वाली चीज। इसका लफ्ज मैंने तर्जुमा दुपट्टे नहीं किया, आपको याद होगा, मैंने कोई कल्चर का लफ्ज नहीं यहां बोला। ओढ़नी ठीक है, आपके बहुत सकील उर्दू में शायद ओढ़नी दुपट्टे के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन ओढ़नी का लफ्जी माना क्या है? ओढ़ी जाने वाली चीज, चाहे वो कोई भी हो, उसे आप बुर्का कहें, स्कार्फ कहें, दुपट्टा कहें, चादर कहें, जिससे छुपाया जाए। तो खिमार अरबों के यहां, अरब औरतों का अगर आप दौरे जाहिलियत की अरब औरतों का कल्चर देखें तो वो क्या करती थी कि सर का जो लिबास होता था उसको यहां से पहनकर, यानी सर ढांक कर, यानी इसमें तसव्वुर ही नहीं कि सर खोल दें, क्योंकि सर ढांकते

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी बात का यकीन कोई मानी नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज़ था, खुदा ने इनका मर्ज़ और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है, सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ। सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ईमान की कसौटी ये है और काबिल कबूल ईमान सिर्फ़ वो है जो कि सहाबा कराम की तरह का हो। गौर फरमाइए कि सहाबा कराम की कितनी इज़्ज़त अफजाई है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और किस्म इस तरह बयान फरमाई, सूरतुल बकर की आयत नंबर 14, 15 और 16 का तर्जमा, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो इनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो उनसे हंसी किया करते हैं। ये मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही खरीदी तो ना तो इनकी तजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना ही वो हिदायत याब हुए। बस अल्लाह ताला मुनाफिकीन को मोहलत दे रहा है कि वो मुनाफ़कत से बाज आ जाएं और इसने इन्हें मोमिनीन की दुश्मनी के अंधेरे में भटकता हुआ छोड़ दिया है। ये लोग वो हैं जो हदायत के बदले गुमराही खरीद रहे हैं और ये सिर्फ नुकसान का सौदा है। इसके बरक्स आइए देखिए कि अल्लाह ताला मोमन मर्दों और मोमन औरतों के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12 का तर्जमा है कि जिस दिन तुम मोमन मर्दों और मोमन औरतों को देखोगे कि इनके ईमान का नूर इनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है तो इनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि तुम्हारे लिए आज बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इनमें हमेशा रहोगे और यही बड़ी कामयाबी है। मोहतरम सामईन, यहाँ कई बातों की वजाहत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि मोमन मर्दों और मोमन औरतों के अजर यकसा हैं, रोशनी उनके दाहिनी तरफ होगी यानी इनका आमाल नामा इनके सीधे हाथ में दिया जाएगा और रोशनी یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے

0: इन लोगों पर आपको भी नज़र रखनी चाहिए कि ये जो क्रिमिनलिटी है, फिर उन्हीं को बेचारों को तकलीफ़ होती है, फिर वो मुसीबत में मारे जाते हैं, लंबी लंबी सज़ाएं हो जाती हैं, फिर कानून को गालियां दी जाती हैं, सियासतदानों को गालियां दी जाती हैं, और हम फिर अपना भी अपना अपना जो है तबसरा करना शुरू कर देते हैं। तो हमें सामान्य नाज़रीन, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की हमें सियासत करनी चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए। जहाँ भी कानून का एहतराम किया जाता है आपको सहूलियात मिलती हैं, जहाँ भी अच्छे काम होते हैं आपको सहूलियात मिलती हैं। अगर कोई कानून को तोड़ेगा, दुनिया के किसी हिस्से में भी तोड़ेगा, तो कानून हरकत में आता है। जो मर्जी आप कर लें, कानून से कोई नहीं लड़ सकता, स्टेट से कोई नहीं लड़ सकता।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

तो इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि लिबास आपका अच्छा हो, आपका लिबास मुहतरम हो। ये और इस चीज का सारे इंसान ख्याल रखते हैं कि यही फर्क होता है कि लोग जो है एक लिबास रखते हैं, ऐसा लिबास जिसमें आम नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, और फिर ऐसा होता है कि लोग कहीं किसी पार्टी में जाते हैं, किसी मजलिस में जाते हैं, तो फिर ये खास लिबास पहन के जाते हैं जिससे उनकी खूबसूरती में इजाफा होता है। तो यार इंसान की फितरत में है ये, तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं, इस्लाम की तालीमात ये है कि लिबास हर वक्त ऐसा लिबास होना चाहिए जो आपकी खूबसूरती में इजाफा करे। और खास करके फरमाया कि जब आप लोगों के सामने आप चाहते हो कि अच्छे से अच्छे लिबास में जाएं, और इस लिबास की वजह से जो है लोग आप जो है आपकी इज्जत एहतराम में इजाफा हो, और किसी कहा जाता है अन्ना सुबिल लिबास, ये लिबास की वजह से कहा अच्छा खूबसूरत लिबास पहनो, तो अल्लाह ताला ने अपनी जहां इबादत के लिए हुक्म दिया है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि लिबास तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, लिबास तुम्हारा अच्छा लिबास होना चाहिए। अच्छा लिबास पहन करके अल्लाह की इबादत करने के जब खड़े हो जाओ है तो इसलिए उसमें अच्छे तरीके लिबास पहनोगे। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो अगली आयत में, इसी अगली आयत ही आ रही है, मस्जिद आदम की औलाद, हर मस्जिद से मराद सजदा और इबादत, जब इबादत जब करते हो वैसे मराद जो है नमाज, नमाज ही मराद है इसे, और नमाज में सजदा होता है, तो ये जब करो तो फरमाया अपनी जेब व जीनत को ले लिया करो। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा लिबास पहना करो, अच्छा लिबास पहन करके अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े हो। इसलिए फुकहा ने लिखा है कि एक आदमी अगर ऐसा लिबास पहनता है कि अगर वो लिबास पहनकर लोगों के सामने नहीं जाता है, और तो अगर लोगों के सामने जाने की तोहीन समझता है, और तो ऐसा लिबास पहन के नमाज पढ़ना मकरूह है। ये कि जब आप लोगों के सामने लिबास पहन के नहीं जाते हो तो अल्लाह के सामने आप कैसे ऐसा लिबास पहन पहन के करते हो, तो अल्लाह ताला जो जो है आप जिसने आपको पैदा किया है तो उसका जो अल्लाह ताला का जो इबादत है और अल्लाह ताला का जो हक है वो ये कि उसके सामने अच्छी जो है हैयत में आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी दो। तो इसलिए जो है नमाज पढ़ने में मर्द और ख्वातीन को अच्छा लिबास रखना चाहिए और अच्छे लिबास में इबादत करनी चाहिए। ये मतलूब है जो है इस्लामी तालीमात में। ये इसमें फिर याद है कि ये बाज दफा हमारे जो लोग खास करके इंडिया पाकिस्तान के इसमें कि ये करते हैं कि खास मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद यहाँ से पुरानी पुरानी टोपियां पड़ी रहती हैं और गंदी मंदी टोपियां पड़ी रहती हैं तो वो सिर पर रख लेते हैं, तो इसमें फुकहा ने लिखा है कि ये मकरूह है कि जो टोपी पहन के आप बाहर लोगों के सामने नहीं जाते हो तो वो टोपी पहन कर नमाज आप पढ़ते हो, तो ये मकरूह है ये। और तो इसलिए हाँ टोपी पहनना ये सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी अगर टोपी पहन के नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज की अदर सवाब में इजाफा होता है क्योंकि सुन्नत के हो जाता है ये। लेकिन वो टोपी ऐसे ही हो जैसे आपका अपना लिबास है, साफ सुथरा टोपी भी साफ सुथरा होना चाहिए, ये ना हो कि गंदी मंदी टोपियां पहन लेते हो तो वो टोपी पहन के आदमी अजीब सा लगता है, बाहर नहीं जा सकता है, तो ऐसी टोपी पहनने से फुकहा ने कहा कि मकरूह है और ऐसी टोपी नहीं पहन, उससे बेहतर है कि आप नंगे से ही पढ़ लो। लेकिन यह है कि सुन्नत जो है वो पूरी यही है कि आप सर पर टोपी रख करके आप, और अच्छी टोपी रख करके जैसे आपकी कमीज अच्छी होनी चाहिए या आपकी सलवार अच्छी होनी चाहिए ऐसे अच्छी टोपी पहन करके आप नमाज पढ़ेंगे। तो बहरहाल तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि युवारी सवातिकुम रीशा व लिबास तक्वा ज़ालिका खैर, और फरमाया कि ये भी याद रखो कि तकवे का लिबास जो है वो सबसे बेहतर है। तो माना कि इसका क्या है कि इस दुनिया में लोगों के सामने इज्जत वाला होने के लिए, मोहतरम बनने के लिए, खूबसूरत बनने के लिए दुनिया में आपने एक जाहिरी लिबास पहनना पड़ता है, उस लिबास की वजह से आपको लोग पहचानेंगे, आपकी इज्जत एहतराम होगी। तो लेकिन आखिरत में ये लिबास तो नहीं होगा, तो वहां जो है जहाँ मैदान हश्र में सारे लोग वहां जमा होंगे तो वहां जो है कि लोगों के सामने आपकी वहां भी इज्जत एहतराम हो, लोगों के सामने आप बावकार बाइज्जत लगे, तो वहां क्या मसला रहते, वहां फरमाया तकवे का लिबास, वो तकवे का लिबास जो है वहां ये चलेगा। इसलिए दुनिया के लिबास ख्याल रखो और आखिर के लिबास ख्याल रखो, और तकवा क्या होता है कि हर हाल में अल्लाह तबारक

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।